हिजरत नहीं सिर्फ तरके वतन हे जरूरी गुनाहों को भी छोड़ दे असल हिजरत नहीं सिर्फ तरके वतन हे जरूरी गुनाहों को भी छोड़ दे नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ हिजरत यू आर मेकिंग फ्रॉम दिस कंट्री टू अनदर कंट्री फ्रॉम दिस टाउन टू अनदर टाउन बट असल हिजरत द रियल हिजरत इज नॉट जस्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रियल हिजरत इज द हिजरत फ्रॉम सिंस टू गिव अप सिन माना अल्लाहु अन व्हाट एवर अल्लाह ताला हैज प्रोहिबिटेड टू मेक हिजरत फ्रॉम दैट टू रन अवे फ्रॉम दैट असल हिजरत नहीं सिर्फ तर्क वतन ये जरूरी गुनाहों को भी छोड़ दे असल हिजरत नहीं सिर्फ तर्क वतन लज्जत जिक्र नाम खुदा है चमन और गफलत की दुनिया है दशत व दमन बिल यकीन पाएगा निस्बत औलिया बिल यकीन पाएगा निस्बत औलिया जिसके दिल को लगी है खुदा से लगन बिल यकीन पाएगा निस्बत औलिया जिसके दिल को लगी है खुदा से लगन If we want that nisbat of the awliya-e siddiqeen, if we really want our hearts to also shine and light up like the hearts of those who are the walis of Allah tabaraka wa ta'ala, then we must have in our heart that desire and we must apply ourselves. We have to make that mujahada, khuda se lagan, when we really have that muhabbat and that ishq for Allah ta'ala and His Nabi alayhi salatu wa sallam and we make an effort in that direction, then Allah tabaraka wa ta'ala also will then give us those hearts. He will get the nisbat of the awliya. It's not something Allah ta'ala has reserved only for very special people. Allah ta'ala wants to give it to every believer. Every mu'min has got the salahiyat in him. He's got the istidad in him. He's got the capability in him. He's got the potential in him. But if there is a potential, you have to make use of that potential. If we don't make use of the potential, how are we going to succeed in any field? A student has got the potential to excel and to get A's in all subjects in metric. He's got the potential. But he passes his time in the disco, cinema, rave club, drugs. Will he pass? Will he get A's? So, to get this nisbat of the awliya also, we have to make the effort in that direction. Bil yaqeen paega nisbat awliya जिसके दिल को लगी है खुदा से लगन लज्जते जिक्र नाम खुदा है चमन और गफलत की दुनिया है दशत व दमन शहर महबूब होगा जहां भी कहीं शहर महबूब होगा जहां भी कहीं

आगोश मोहब्बत है सरकार दो आलम की। मोमिन की निगाहों में फिरदौस से भी बढ़कर। इन द आई ऑफ अ मोमिन एंड अ ट्रू बिलीवर ऑफ अल्लाह तबारक व तआला, नबी अलैहिस्सलाम आगोश मोहब्बत इज इवन मोर देन बीइंग इन जन्नत एंड जन्नतुल फिरदौस। Because what is Jannatul Firdaus if Nabi alayhi salatu wasalam is not there? Our desire is to see Allah tabaraka wa ta'ala with our own eyes in Jannat. And where else will we get mulaqat with Rasulullah Pak sallallahu alayhi wasalam? In dreams people see Nabi alayhi salatu wasalam. But real mulaqat, where else can a true mu'min have than in Jannat?

जन्नत है तू जन्नत है, सरकार दो आलम की। ऐ अर्ज़ मदीना काश आंखों में तुझे रख लूं, जन्नत है तू जन्नत है, सरकार दो आलम की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनवार तजल्ली से हैं दोनों जहां रोशन, क्या शम्मे रिसालत है सरकार दो आलम की। अनवार तजल्ली से है दोनों जहां रोशन, बोथ द वर्ल्ड आर लिट अप विद अनवार तजल्ली ऑफ नबी अलैहि सलातो वसलाम। व्हाट अ काइंड ऑफ लाइट इज दैट, क्या शम रिसालत है

फैली हुई निकहत है सरकार दो आलम की। वाई शुड द होल ऑफ मदीना नॉट बी फ्रेग्रेंट? नबी अलैहिस्सलाम, फ्रेग्रेंस इज परमिएटिंग द एंटायर मदीना शुड।

ठिकाना नहीं है यार, अब जिधर भी जाऊं। सिवाय तेरे कोई ठिकाना नहीं है यार, अब जिधर भी जाऊं।